listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जदों लग्या तेनू इश्क दा रोह

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग RJ Tanisha के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: up.
1: Tanisha.
0: तनीषा तो कब से मेकअप हो गई है जी, आप ही गई आपसे बातें शादी करने के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. तनीषा ये जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर. थर्सडे का दिन जुलाई 23, खुशियां ही खुशियां. वीकेंड आते ही ना दिल में ऐसे खुशी की लहर दौड़ उठती है.
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: ओए होए,
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल,
0: क्या हाल चाल है? कल का दिन कैसा रहा आपका? आज क्या प्लान है? वीकेंड के क्या प्लान है? बहुत सारी बातें करनी है भाई. तो अभी तो शुरुआत हुई है, बढ़िया बढ़िया गाने लाइनअप है आपके लिए. मॉर्निंग मैसेजेस कुछ मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ और आने वाले हैं जिनका मैं इंतजार कर रही हूँ. 3311 1063 इज द नंबर, फटाफट से आ जाओ. गुड मॉर्निंग का प्यारा सा क्रिस्पी सा एकदम फ्रेश वाला मैसेज भेज दो और दिल खुश कर दो मेरा, जैसे कि मैं आपका दिल खुश करने वाली हूँ ये गाने सुना के. बहुत सुंदर गाना. एंड द फैक्ट कि ये गाना मूवी में नहीं होने वाला था, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये सुन के यार.
2: कैसे समझाऊं तुम्हें मेरा पहला पहला प्यार है ये. वो,
0: केके की आवाज में MP3 टाइटल ट्रैक और सुनिधि चौहान भी है लाइन में. ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक और बहुत सुंदर गाना.

हाँ जी, हमने नहीं बॉदर करना उस बारे में, हमने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, ठीक है। फिलहाल सिद्धार्थ की आवाज में टॉक्सिक से सुनेंगे मधोश, लेकिन उससे पहले नंबर याद दिला देती हूँ, 3311063। मैसेज कर दीजिए मुझे फटाफट से, इंतजार कर रही हूँ और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM। जियो बिंदास मेरी जान।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucard. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucard in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucard, world's favorite jeweler.
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनीषा
1: तमाशा मूवी से हल्का, ये आगने कर अरिजीत सिंह की आवाज में अगर तुम साथ हो। हां जी, ब्यूटीफुल ट्रैक। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनीषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहां पर, एंड इट्स टाइम टू रीड द गुड मॉर्निंग मैसेजेस। सो नाजनी जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, वेक अप, स्ट्रेच एंड लेट द मॉर्निंग सन पेंट अ स्माइल ऑन योर फेस। ब्यूटीफुल, लेट इट डू दैट, ओके। एंड शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। और फिर साथ में कहा है, नेवर ब्लेम अ डे इन योर लाइफ, गुड डेज गिव्स यू हैप्पीनेस, बैड डेज गिव्स यू एक्सपीरियंसेस, द वर्स्ट डेज गिव यू अ लेसन, एंड ऑल आर गॉड्स ब्लेसिंग्स। इनडीड, हमें किसी भी चीज को लेकर ऐसे कैरी फॉरवर्ड करके जाने की जरूरत नहीं है। आज का दिन अच्छा है बुरा है जैसा भी जा रहा है, आज ही जी लो, इसके बाद कल इसके बारे में नहीं सोचने का है, क्योंकि कल एक नया एक्सपीरियंस होगा ना बाबा, तो उसके लिए भी तो जगह बनानी होगी लाइफ में। देन मुझे यहाँ पे एक का मैसेज आया है, कुड यू प्लीज राइट योर नेम सर और मैम, हुएवर इट इज, द मैसेज इज, अवेक विथ ग्रेस, वेयर अ स्माइल, जॉय विल फॉलो माइल बाय माइल। इन डीड, एंड दैट इज सो ट्रू। देन अतुल जी ने चाय का कप भेजा है, पहाड़ों में ओए, ऐसी सुंदर मॉर्निंग तो हम सब चाहते हैं ना, और वीकेंड पे हो तो बात ही अलग है। अस्मा का भी गुड मॉर्निंग आया है, गुड मॉर्निंग जी। संधू जी का भी मैसेज है, गुड मॉर्निंग कतर, हैव अ ब्लेस्ड डे, हरपाल संधू फ्रॉम जिक्रीत दखन जियो बिंदास। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू, जिन्हें अभी तक वक्त नहीं मिला है कि वो मैसेज कर पाए। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ, बहुत पेशेंट हूँ आपके लिए मैं। हाँ जी, 3311-1063 इज द नंबर, बस ये याद रखना। एंड दोज हु आर ड्राइविंग, गोइंग टू वर्क, बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग, बिकॉज आप इंपॉर्टेंट है मेरी जान, ठीक है। और फिलहाल भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

KKKVAS में MP3 से टाइटल ट्रैक. व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ क्यूट मूवी इट इज. अगर आप इस वीकेंड ऐसे कुछ देखना चाहते हैं ना, क्यूट सा रोम कॉम टाइप्स का, डू वॉच दिस मूवी. नॉट कॉम रियली, बट रोम. यस, रोमांटिक तो है और बहुत क्यूट मूवी है यार, बहुत प्यारी. तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 FM पर. ऑलरेडी चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर और मैसेजेस हैं कुछ, आइए पढ़ते हैं. सो मुझे मैसेज आया है शायगा, ओके, इट्स जिजेल, शॉन एंड शैला. गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग. विल यू प्लीज विश पॉल अ हैप्पी बर्थडे. व्हाई नॉट माय लव, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू पॉल. एंड इट्स अ वीकेंड, सो हैव अ ब्लास्ट. बढ़िया पार्टी करो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड ग्रांट यू ऑल योर विशेस. यस, हैव अ ग्रेट डे. और अगर केक शेक भेजना हो तो रेडियो ऑलिव के एड्रेस पर बिंदास ऐसे डिलीवर करा देना. और अस्मा का मैसेज आया, शी इज आस्किंग अबाउट दिस सॉन्ग आई प्लेड प्रीवियसली, दैट वाज फकीरा ओनली. द टाइटल इज फकीरा एंड इट्स बाय गुरनाम भुल्लर. एंड ओके, इट्स ए फॉर अर्श. गुड मॉर्निंग अर्श, ग्लैड टू नो योर नेम. एंड देन मुझे अब्रार जी ने हैप्पी हैप्पी थर्सडे कहा है. मैं हैप्पी बर्थडे बोलने वाली थी. मे योर डे बी प्रोडक्टिव, योर हार्ट बी पीसफुल एंड योर मोमेंट्स बी ट्रूली हैप्पी. इंशाल्लाह, हम सब के लिए मैं यही प्रे करती हूँ. और एक बहुत सुंदर सी चीज़ लेकर आई हूँ, थॉट लेकर आई हूँ, यू नो, टू स्टार्ट दिस मॉर्निंग विद पॉजिटिविटी. इफ यू आर परसिस्टेंट यू विल गेट इट, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल कीप इट. And if you are grateful, you will attract more. That's the fund of life, yaar. Efforts डालने पड़ेंगे continuously, तभी आप अपना goal achieve कर पाएंगे. और उसे एक बार achieve कर लिया तो उसे for granted नहीं लेना है. You know, continuously उसके लिए efforts डालते रहने हैं, तभी वो आपके पास रहेगा. And then gratefulness तो हर aspect of life में बहुत ज़्यादा important है. और being grateful ना is kind of a manifestation to attract more positivity, more better things in your life. So be grateful always. Yeah. Abhi main grateful hu is kamal gaane ke liye, kyunki oh vibe. I enjoy karte hain Uri in the voice of Sunidhi Chauhan from the movie Guzarish. Stay tuned and Riyo Bindas, meri jaan.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today. Radio.

0: तनिषा
1: लक्ष्य कपूर और सुवर्णा की आवाज में बड़ा सुंदर गाना दिल से दिल तक फ्रॉम द मूवी बवाल ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं अबर रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोट स्टोरीज इन ब्लैक बोर्ड स्टोरीज वी बोथ आर लर्निंग समथिंग आप भी कुछ सीख रहे हो मैं भी कुछ सीख रही हूँ सो आज का जो मेरा सवाल है इफ यू नो टेल मी अदरवाइज कुछ देर में अगर मैं तो आपको बताऊंगी ही कि ऐसा क्यों होता है सो द क्वेश्चन टुडे इज व्हाई डज द स्काई चेंजेस कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट क्यों आसमान का रंग खूबसूरत सा बदल जाता है सनराइज और सनसेट के टाइम पर एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड यार मतलब दोज यूज ऑफ ऑरेंज पिंक समटाइम्स रेड येलो इट्स ब्यूटिफुल क्यों होता है वो कलर चेंज ये मैंने जानना है बताइए मुझे 3311106 पर या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर फिलहाल भेज रही हूँ Fresh song of the hour, Khosla Raghu ki awaaz mein. No, Khosla Raghu movie se. Stay tuned and Jio Bindas.
0: Radio Olive Par.
2: Fresh. Ye gana fresh hai.
0: Fresh song of the hour.
2: Ye gana

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंस ब्लैक बोर्ड स्टोरीज सवाल पूछा था कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो आसमान का कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है सो आई हैव गॉट टू आंसर्स ओनली हियर आई न्यू कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिकॉज आई लव दोस कलर्स सो आई हैड टू आस्क एंड आई हैड टू शेयर कि क्यों ऐसा होता है सो द रीजन बिहाइंड इट इज कि जब आसमान ऑरेंज हो जाता है या फिर पिंक हो जाता है ड्यूरिंग सनराइज या सनसेट इट इज बिकॉज जो सनलाइट है वो ट्रैवल करके आ रही है अर्थ के एटमोसफियर से एंड उस टाइम पे जो शॉर्टर ब्लू लाइट होती है वो इधर उधर फैल जाती है दैट्स वाई यू डोंट सी ब्लू अलॉट लेकिन जो लॉन्गर रेड और ऑरेंज और येलो लाइट्स होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है एंड दैट इज वाई वी सी दोज ब्यूटिफुल ह्यूज द शेड्स ऑफ पिंक ऑरेंज रेड एट टाइम्स येलो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल विंटर्स में स्पेशली मजा आ जाता है यार ऐसे सनराइज एंड सनसेट विटनेस करने का खूबसूरत प्लेजेंट वेदर हो और आप बैठे हो इधर किसी नदी के किनारे या फिर यू नो कॉर्निश पे भी ओ इट्स ब्यूटिफुल आई रिमेम्बर वंस All of us friends were talking और किसी ने ऐसे randomly बोला कि यार it was winter का time कि यार सुबह जल्दी उठ के चलते हैं दोहा पोर्ट पे and we'll you know witness the sunrise and it was very impulsive and impromptu and we all got up the next morning early and we went to Doha port और हमने वहाँ sunrise देखा and it was magical बहुत सुंदर था और I don't know some kind of serene vibes were there बढ़िया दिन गया था उस दिन और वो आज तक एज्ड यू नो दैट इमेज ऑफ दैट ब्यूटीफुल सनराइज इट वाज अमेजिंग सो या विंटर का इंतजार कर रही हूँ सो दैट और भी अमेजिंग सनराइज जो है ऐसे मैं एक्सपीरियंस कर पाऊँ सुंदर है रेडियो ऑल जी बिंदास

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलीनियर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Hi there, friends. This is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: आकाश सिंह की आवाज में ठग रांझा वाली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं। वेदर थोड़ा बेटर हो रहा है ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि 38 डिग्रीज है राइट नाउ एंड इट फील्स लाइक 37, तो चलो कम तो फील हो रहा है तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आज जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो 48 डिग्रीज जा सकता है एंड लोएस्ट कुड बी 35 डिग्रीज जो कि रात में होगा। एंड दिन भर बहुत ऐसे स्वेल्टरिंग हीट रहने वाली है, डिहाइड्रेशन का डेंजर है, सो प्लीज मेरी जान स्टे हाइड्रेटेड। कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ पानी इलेक्ट्रोलाइट्स रखिए, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद रखना है और आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिमाइंड कराती रहती हूँ। एंड बहुत सारा सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द सनराइज एंड सनसेट का कलर, वो क्यों चेंज होता था स्काई का कलर एट दैट टाइम, तो उस पर शैला ने एक बड़ी सुंदर सी बात करी है कि यू नो सम थिंग्स आर जस्ट टू बी एक्सपीरियंस, उन्हें महसूस करना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई मेंट, यू नो देयर इज अ मैजिक इन सनराइज एंड सनसेट वो विटनेस करने में, एंड आई डू नॉट थिंक कि उसको इतनी आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। तो बस एक्सपीरियंस करो और मजे करो यार। सेंटिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

अच्छी लगती हो फ्रॉम द मूवी कुछ ना कहो ऑन योर रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड 25th of July दिस सैटरडे इज गोना बी पर्पल सैटरडे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनवाइट किया है जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको टू पार्टिसिपेट इन द पर्पल सैटरडे 2026. सो पर्पल सैटरडे क्या है? इट इज एन एनुअल इनिशिएटिव जो प्रमोट करता है इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज. आई लव दिस अबाउट कतर. यू नो फॉर इंक्लूजन बहुत काम होता है यहाँ पे. द सोसाइटी इज अ वेरी इंक्लूसिव एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग सच रियली अमेजिंग स्टेप्स टू मेक इट अ बेटर फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव स्पेस फॉर एवरीबॉडी. और ये जो पर्पल सैटरडे है इसमें जो बिजनेसेस हैं दे आर एनकरेज टू प्रोवाइड स्पेशल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, एक्सेसिबल फैसिलिटीज एंड सर्विसेज और मोर इंक्लूसिव शॉपिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. सो 25th of July सैटरडे को ये ऑब्जर्व होने वाला है और उसी टाइम पर कैंपेन के दौरान ही ऑफर्स भी रन करेंगे. एंड बिजनेसेस कैन रजिस्टर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सिंगल विंडो पोर्टल टू जॉइन द इनिशिएटिव. और ये जो कैंपेन है इट सपोर्ट कतर्स एफर्ट्स टू एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज विच वी नो दे आर डूइंग रियली वेल. एंड पर्पल सैटरडे पूरे GCC में लास्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दिस 25th we are going to be having Purple Saturday. I absolutely love this. On that note, sending a really amazing track, Oi Boy Charlie in the voice of Rekha Bhardwaj and Mohit Chauhan. Stay tuned on Jio Bindas Meri Jaan.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और हिमेश रेशमिया is celebrating his birthday today. Oh my God, that man सबको पागल कर दिया था उन्होंने अपने गाने से. But I don't know why, for no reason, everybody was trolling him. You know, when he was in his peak, 2005 वाला जो era था, I think, वहाँ पर. And every other song, हिमेश का गाना. हर दूसरा गाना उन्होंने कंपोज किया है, लिखा है, गाया है. और फिर जब वो एक्टिंग में आ गए ना, वहाँ चीज़ें गलत हो गई थोड़ी सी. लेकिन उनके गाने आज भी हम सबकी जुबान पर चढ़े हैं. एंड यू नो, दर्द भी है अगर गाने में, तब भी इतनी वाइब है. क्या कमाल म्यूजिक होता था. एंड हिज सिग्नेचर कैप एंड दैट नेजल वॉइस, उसके लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया जाता था. एंड आई नेवर अंडरस्टूड कि क्यों भाई. वो डिलीवर कर रहा है ना आदमी, वो क्या कमाल बैंगर्स बना रहा है. हम आज तक याद करते हैं, आज तक थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं, वाइब करते हैं उन गानों पे, पर फिर भी ट्रोल करना है. Why? No reason, right? And he was such a gifted person. मतलब उनका विजन कुछ अलग ही था. वो कुछ अलग तरह से चीजें देखते थे, सोचते थे. I mean, still do. So once I was hosting Shan's concert, okay? So we were having this backstage conversation with him. तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं, एक कोई बिजार रिकॉर्डिंग सेशन आपका हुआ हो जहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब चीज हुई, you never expected and all. So he was like, एक बार हिमेश ने मुझे गाने के लिए बुलाया एंड मेरा गला ठीक नहीं था. तो मुझे लगा कि यार नहीं कर पाऊंगा, मैं जाकर बोल देता हूँ. बट देन आई वॉज अ बिट ग्रीडी कि नहीं, मुझे देख लेते हैं, अगर नॉर्मल सा हुआ, सिंपल सा गाना, तो मैं शायद कर भी पाऊँ. पता चला वहाँ जाके कि इट्स अ फुल डांस नंबर एंड ऑल. तो मैंने कहा नहीं हिमेश, आई कॉन्ट डू इट बिकॉज यू नो गला खराब है, नहीं हो पाएगा, इट वोंट साउंड नाइस एंड बहुत क्रैक्ड सी वॉइस आ रही है. तो हिमेश वॉज लाइक कि नहीं, तू जा यार, तू कर. पता नहीं ये फटी हुई आवाज़ से ही बात बन जाए, क्या पता ऐसे ही चल जाए. एंड ही फोर्स्ड शान टू सिंग द सॉन्ग. शान ने गाया एंड हिमेश वाज लाइक यार ये तो बहुत क्रेजी साउंड कर रहा है, बहुत कमाल साउंड कर रहा है, ये तो चाहिए चाहिए, दिस विल बी अ हिट. एंड शान हैड नो कॉन्फिडेंस इन इट बिकॉज उन्हें लग रहा था कि यार फटी हुई आवाज़ कोई क्यों सुनेगा मेरी. तो शान वाज लाइक ओके फाइन, ही डिड नॉट लिसन. एंड शान ने कहा ओके ठीक है, अगर उसे ठीक लग रहा है तो मैं कौन यूं बोलने वाला. ही जस्ट लेफ्ट एंड देन लेटर ऑन दैट सॉन्ग बिकेम अ हिट. ही गॉट अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर दैट. यस, दैट्स शान्स वर्ड्स. सो या दैट वाज हिमेश रेशमिया की वो एक ऐसी चीज जो कि यूजुअली लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसमें से भी आर्ट निकाल लेते थे, उसमें से भी म्यूजिक निकाल लेते थे. लेट्स लिसन टू दैट अमेजिंग ट्रैक ऑन हिमेश रेशमिया'स बर्थडे. निकम्मा किया इस दिल ने. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान. जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश. सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
0: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
3: Guys, this is Jonita Gandhi. Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm the number one. You are listening to me on Radio Olive. Radio Olive. Gio Bindas. Radio
4: Olive, I'm the number one. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Delisha.
1: आतिफ असलम और ज्योतिका टांगरी की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक, बहुत कमाल मूवी. आई थिंक इस वीकेंड देख डालती हूँ, है ना? लेट्स सी. You're listening to Radio 116.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain yahan par, and weekend aa gaya hai. So if you have not decided ki kya karna hai, to let me tell you, bahut sari cheeze ho rahi hai Qatar mein. Dates festival chal raha hai, then Colorverse experience, I told you about it. If you haven't watched the video, फटाफट से हमारे social media पे जाओ, because it is so amazing. मुझे देख के लगा यार, I should have gone यार. So I am looking for an excuse to go there. And Qatar toy festival chal raha hai. That reminds me, contest bhi chal रहा है. अगर आप जीतना चाहते हैं कदर टॉय फेस्टिवल की टिकट्स, तो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू आवर सोशल मीडिया, radio.q इज द हैंडल, फॉलो कर लो. अगर नहीं किया है तो, कर रखा है तो सीधा पोस्ट पे चले जाओ. पोस्ट है, वहां पे एक पोस्टर लगा है, उसमें हमने एक सवाल पूछा है, बहुत आसान सा. आपने उस सवाल का जवाब दे देना है, और यू नेवर नो, यू माइट विन टिकट्स फॉर कतर टॉय फेस्टिवल. यस, तो जल्दी से जाइए और गुड लक रखिए मेरी तरफ से अपने पास. और फिलहाल फूल सॉन्ग ऑफ द आवर भेज रही हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड ट्रियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Cool song.

सुखविंदर सिंह की आवाज में मीनाक्षी मूवी से ये कमाल का गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। मैं पता नहीं कहाँ सोचने लग गई थी कुछ तो, और फिर मेरा चल कहीं और ही चला गया था। वेलनेस फिक्स में इतनी गर्मी जो यहाँ हो रही है उससे बचने का एक बहुत आसान सा और छोटू सा ट्रिक मुझे मिला है। तो जब भी आपको ओवरहीटेड फील हो रहा है, यू नो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इंस्टेड ऑफ पोरिंग कोल्ड वाटर ऑन योरसेल्फ और ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, डू दिस, थोड़ा सा पानी अपने रिस्ट पर डाले, लाइक टैप वाटर ऑन, टैप ऑन करें, उसके नीचे अपनी रिस्ट रखें फॉर 30 to 60 seconds एंड इट विल मेक यू फील अ बिट कूलर, बिकॉज यू नो वहाँ की जो स्किन होती है वो ब्लड वेसल्स के बहुत पास होती है, तो इट हेल्प्स। अलॉन्ग विद दैट देर आर अदर पल्स पॉइंट्स ऑन आवर बॉडी जो कि कूलिंग का काम कर सकते हैं बाय यूजिंग सम वाटर और यू नो कोल्ड कंप्रेशन, दैट इज साइड ऑफ योर नेक, इन साइड ऑफ योर एल्बो एंड बिहाइंड योर नीज। एंड अलॉन्ग विद दैट फिर से याद दिला रही हूँ, स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान, जहाँ भी जा रहे हैं पानी अपने साथ रखें, एंड यू नो ईट फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, लाइट खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली ना हो, और भर भर के सनस्क्रीन लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे प्रिंसन का मैसेज आया है, ही इज़ आस्किंग मी वेदर आई हैव स्टॉप डूइंग द सेगमेंट वर्ड ऑफ द डे। ऐसे कैसे हो सकता है यार, डिक्शनरी और मैं साथ साथ चलते हैं, वो मैं कभी नहीं भूलती, आएगा आएगा, थोड़ा सा सबर करो। फिलहाल इंजॉय करते हैं हिमेश रेशमिया स्पेशल मैं जहाँ रहूँ इन द वॉइस ऑफ राहत फतेह अली खान साहब। स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास। जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन। सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: RCB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: खास मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: गजनी मूवी से बच्चू. ओ माय गॉड व्हाट वाइब. बहुत कमाल गाना, एकदम ऐसे वीकेंड वाली एनर्जी से भर दिया इसने मुझे फिर से. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM द रिंग शो आपके साथ. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड टुमारो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वन फॉर सो लॉन्ग. लाइक जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था ना, मैं तब से इंतजार कर रही थी कल 24th of July को नेटफ्लिक्स पर मुसाफिर कैफे आ जाएगी. यस, कल ही वो नेटफ्लिक्स पे आने वाली है. एंड आई हैव रेड दैट बुक. इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. दिव्य प्रकाश दुबे जो है उसके ऑथर, बहुत सुंदर, और वो हिंदी में है. So that's what I loved about that book. And it is about, you know, love, timing, ambition, heartbreak, self-discovery. Sari themes ek saath mil jayenge aapko ek bahut hi khoobsurat story ke saath aur bahut kamal ke characters hain. So I am waiting eagerly for this one. Jo adaptation hai Netflix pe jo aane wala hai, usme Vikrant Masi, Vedika Pintu aur Mahima Makwana hai. And obviously Vikrant will be playing Chandar. Ab Sudha kaun hai aur saath mein Preeti kaun hai, ye dekhne ke liye kal tak ka intezar karna padega. Lekin badhiya gaane sunne ke liye bilkul intezar karne ki zarurat nahi hai.
1: Ruk jao dil diwane, poochho to main zara.
0: DDLJ se aur phir ye wala gaana aa raha hai. और हिमेश सर का जो आज हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका स्पेशल तो बनता है. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. फिलहाल सुनते हैं एक बहुत मजेदार गाना, सुन के मजा आ जाएगा आपको. स्टे ट्यून एंड जियो विद नास मेरी जान.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
4: हाय, मैं राजकुमार राव।
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Danisha.
1: DDLJC Udit Narayan Sahab ki awaaz mein ruk jao dil diwane only on Radio Live 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par aur waqt ho chuka hai jis cheez ka Prince intezaar kar rahe the, word of the day ka.
2: Ye hai chalti phirti dictionary.
1: Aur aaj ka jo word hai wo specifically weekend pe applicable hoga hum sab ke liye. So the word is Merak. M-E-R-A-K. इसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है लेकिन इट कम्स फ्रॉम सर्बिया क्रोएशियन बॉस्नियन टर्किश कल्चरल यूजेज और बेसिकली इसका मतलब है एक डीप सेंस ऑफ जॉय कंटेंटमेंट और प्लेजर व्हिच इज फाउंड इन लाइफ्स सिंपल मोमेंट्स जैसे कि वीकेंड आ गया है अब कल आप बस बैठ के ऐसे आराम से चाय कॉफी ब्रेकफास्ट व्हाटएवर यू आर गोना हैव आराम से एकदम वो करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ लव्ड वंस के साथ एंड यू आर जस्ट गोना एंजॉय दैट मोमेंट इट विल बी फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस यू नो दैट इज मिराक फॉर यू लाइक सिपिंग अ कप ऑफ कॉफी ऑन अ क्वाइट मॉर्निंग लिसनिंग टू रेन व्हाइल रीडिंग अ बुक ब्यूटिफुल वॉचिंग अ सनसेट एंड समवन यू लव Enjoying music with no distractions, jaise radio all of meri jaan. Hanji, that is Mirak for you. And I wish you a Mirakful weekend, if that makes sense. Yeah. And right now, sending an amazing track, Bandhu 2.0, in the voice of Kavita Seth and Neeraj Sridhar from the movie Cocktail 2. Stay tuned and Jio Bindas meri jaan.
3: Ab suniye, Olive ka Zabardast hai.
4: Zabardast hai.

0: Tanisha.
1: विशाल टिटलानी और सुनीति चौहान की आवाज में छोकरा सवार है फ्रॉम द मूवी शहजादे. कमाल गाना. एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. आई रिमेंबर दिस मूवी, आई बंक्ड कॉलेज से और मैं देखने गई थी और रास्ते में, मतलब दिमाग देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा स्मार्ट और शार्प हूँ मैं कि पापा के ऑफिस के सामने से निकल के जा रही हूँ, जी हाँ, अपनी फ्रेंड के साथ. और देख लिया पापा ने, ये तक नहीं सोचा कि अरे वो देख सकते हैं, आया ही नहीं ना दिमाग में. फिर जब मैं थिएटर में बैठी हूँ मूवी देख रही हूँ, पापा को कॉल आता है, बेटा कहाँ हो आप? तो डर लग गया. मैंने कहा ऐसे तो पापा कभी कॉल करते नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है. आई जस्ट सेड कि अरे वो अंशिता के घर आए थे, लाइक माई फ्रेंड्स प्लेस, उसका घर वहीं पास था पापा के ऑफिस के, तो वी फॉरगॉट वन नोटबुक एंड ऑल. ही वॉज लाइक हाँ वहीं मैंने तुझे देखा, दैट्स वाई आई कॉल्ड यू कि वेयर आर यू. मैंने कहा बस अभी कुछ ही देर में बस जा रहे हैं वापस. और पूरा मूवी मैंने देखा ऐसे धक धक करते हुए, बिकॉज नहीं बोला जाता ना ऐसे झूठ. अब देख लिया उन्होंने, आप कैसे बोल सकते हो उन्होंने देखा है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते आपने किसी और को देख लिया है. नाउ देन व्हेन आई वेंट होम आई वाज लाइक, मम्मा एक बात बतानी थी, आई ना एक्चुअली बंक टुडे एंड आई वेंट टू वॉच दिस मूवी विद माय फ्रेंड. एंड माय मॉम वाज लाइक, तो अब क्यों बता रही है, देख तो ली तूने, पूछ नहीं सकती थी तू. मैंने कहा आप ऑब्वियसली छुट्टी करके जाने तो नहीं देते मूवी देखने के लिए. और जो आज टॉपिक का डिस्कशन था ऐसे क्लास में, वो मज़ेदार भी नहीं था. तो वी लाइक लेट्स गो फॉर द मूवी. पर पापा ने इसे देख लिया तो मुझे डर लगा था. एंड ऑल दिस हैपेंड एंड शी वाज लाइक ओके नेक्स्ट टाइम डू नॉट डू दैट. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भाई झूठ बोलने से बहुत क्रेजी वाली एंग्जाइटी होती है. सो लेट्स नॉट गो देयर. बता दो यार कुछ नहीं होता, मान जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा डांटेंगे फिर मान जाएंगे, यू नो. सो या दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं ये नहीं करना है. बट आपको एक काम करना है, वो ये है कि आपको सोशल मीडिया पे जाना है और हमें फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है कॉन्टेस्ट मेरी जान. तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे, बताओ. तो radioolive.qa पे जाओ, इफ यू हैवंट फॉलोड अस फटाफट से फॉलो करो एंड चेक आउट द पोस्ट एंड पार्टिसिपेट करो उसमें. और बस गुड लक रख लो, जीत जाओगे तो बढ़िया है. फिलहाल तो आप जीत गए हैं हिमेश रेशमिया का एक बहुत ही कमाल गाना, लव दिस ट्रैक, इन्जॉय. मतलब जिस तरह से इस गाने को मैं इन्जॉय करती हूँ ना, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती. तो आप जहाँ हैं आप वहाँ इन्जॉय कीजिए, मैं यहाँ अपने स्टूडियो में इन्जॉय करती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास. जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश. सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक.

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

केके और वसुंधरा की आवाज में मैं हुरा मूवी से चली जैसे हवाएं अमेजिंग ट्रैक ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और 9:49 हो चुका है क्लॉक में. दैट्स सेस कि मेरे जाने का वक्त हो गया और कशिश के आने का वक्त हो गया. यस, और वीकेंड है तो जाते जाते यही कहूँगी मेरी जान कि अपना ख्याल रखिएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारा पानी पीते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड, और कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड कीप वाटर विद यू. ठीक है, स्टे हाइड्रेटेड और यू नो रेडियो ऑलिव को फॉलो करते रहो, वो तो मैं बताती रहती हूँ आपको. इफ देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन एंड देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन, जाइए उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और कोई भी बात हो जहन में तो बिना किसी हेजिटेशन के हमसे शेयर कर सकते हैं. 3311 1063 इज द नंबर. ठीक है, और सुनते रहिए रेडियो ऑल है 106.3 FM. जियो बिंदास एंड हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योरसेल्फ.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में यह ट्रैक आपने एंजॉय किया पुकार मूवी से। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, लाइफ एक्स्ट्रा मस्त बनाने का एजेंडा हमारा होता है, लेकिन आज के दिन ऑटोमेटिकली लाइफ मस्त हो ही जाती है क्योंकि वीकेंड आ जाता है। देखो यार, पूरा जो है हफ्ता हम सिर्फ इस दिन का इंतज़ार करते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है, कि हमें ना वीकेंड से ज़्यादा अच्छा, मतलब फ्राइडे से ज़्यादा अच्छा जो है थर्सडे की शाम लगती है कि भाई बस ये रात जो है ख़त्म ना हो, जितनी लंबी हो सकती है उतनी लंबी हो जाए कल, क्योंकि हर चीज़ का स्ट्रेस हो जाएगा कि यार वापस जो है ऑफिस जाना है, जो है कपड़े धोने हैं, जो है रूम साफ करना है, अलमारी जमानी है, बर्तन धो देने हैं, और कुछ अच्छा भी खाना है, खुद को भी तो अच्छा फील कराना है। हम खुद को अच्छा फील कराने का भी स्ट्रेस ले लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय करने। आज बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीकेंड पर अगर कुछ देखने का मन है और मूवी समझ नहीं आ रही है तो वो भी मैं बताऊँगी, रिकमेंड करूँगी आपको। लेकिन उससे पहले कॉकटेल टू का गाना, ऑफकोर्स कैसे नहीं हो सकता ऐसे, हर रोज़ मैं आती हूँ, मेरे शो का सबसे पहला गाना कॉकटेल टू का होता है। तो आज भी जो है कॉकटेल टू से एक अमेजिंग वाला ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय कीजिए, वापस आइए, फिर जरा मौसम का क्या हाल चाल है, बाहर जाया जा सकता है या नहीं जाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12 यानी 10:12। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक खाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: फुल ऑन रेड फ्लैग मूवी कबीर सिंह से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो जो है आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाना ही मेरा एजेंडा है। सो देखिए यार, अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिससे हम सब थोड़े मतलब थोड़े से परेशान हैं, कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, लेकिन थैंकफुली हम कतर में रहते हैं तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वरना इस गर्मी में तो हमारा हाल बहुत ख़राब हो जाता। सो फिलहाल बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। सो दोहा में इस वक्त करंट टेम्परेचर हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 45 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस। सो बस यही है वो कुछ टेम्परेचर जो आपको जानने जरूरी हैं। अब देखिए यार, आपको जो है सनस्क्रीन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त वेरी हाई रिस्क है यूवी से आपकी स्किन को डैमेज होने का। सो यू अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर लगा के रखिए। बाकी विंड जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आज बहने वाली है। कोई बात नहीं यार, कल हेयर वॉश डे है, सो हेयर वॉश कर लेना। आज जो है हो सकता है आपके बाल थोड़े चिप चिप चिप चिप से फील हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत रहने वाली है। बाकी अमेजिंग खबरें जो हैं वो आएंगी आपके रेडियो सेट्स पर। इस हीच को बीच करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर वो भी आ रहा है। सो सबसे पहले सो ये गाना इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया गुड्डू रंगीला मूवी से। एक ऐसी मूवी जो किसी ने देखी नहीं है लेकिन उसके गाने जो है आपने जरूर सुने होंगे। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कसूर एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड अगर आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है सो आप उसे सेलिब्रेट जो है एक ग्रैंड लेवल पे कर सकते हैं कुछ अमेजिंग गानों के साथ। और वो गाने किसके होंगे? हमारे बर्थडे बॉय के गाने होंगे। सो आज हिमेश रेशमिया जी का जो है वो हैप्पी वाला बर्थडे है, या मैं ऐसे कहूँ कि तेरा तेरा तेरा सुरूर उनका हैप्पी वाला बर्थडे। सो देखिए यार, ये जो है मेरे फेवरेट सिंगर और कंपोजर हैं, मतलब बचपन में थे, क्योंकि इन्होंने मेरे नाम का जो है एक गाना बनाया था। यस, इन्होंने मेरे नाम का एक गाना बनाया हुआ था जो कि सुनने के बाद सबको ऐसा लगता है कि वो गाना सुनने के बाद, क्योंकि वो मेरे शायद मेरे पैदा होने से पहले आया था, तो सबको ऐसा लगता है कि वो गाना जो है वो मेरे मम्मी पापा ने उस गाने से इंस्पायर होकर जो है फिर मेरा नाम कशिश रखा है। गाना कौन सा है ये आप मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके, 3311063 पर, कि हमारे बर्थडे बॉय हिमेश रेशमिया ने मेरे नाम पे कौन सा गाना बनाया। फिलहाल हिमेश रेशमिया के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने जो अपना डेब्यू है वो एज अ सिंगर नहीं, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो किया था, प्यार किया तो डरना क्या मूवी से। अब देखिए इनका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू जो था, सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू इन्हें मूवी मिली थी वो थी तेरे नाम, जो 2003 में आई थी, यानी जो साल में पैदा हुई थी उस साल। देखिए इतने पुराने हैं ये। उसके बाद इन्होंने अपनी सिंगिंग की शुरुआत 2005 में की थी आशिक बनाया आपने मूवी से, जिस मूवी का वो गाना है। सो मेरा नाम, अगर आप लोगों को पता नहीं है, मेरे पैदा होने के कुछ टाइम बाद जो है कशिश रखा गया था, एंड वो इस मूवी के बाद रखा गया था। सो आप मुझे बता सकते हैं कि वो आशिक बनाया आपने मूवी का कौन सा गाना है जो मेरे नाम पे बनाए। और भी बहुत सारी बातें जो है धीरे धीरे हम करते रहेंगे हिमेश रेशमिया जी के बारे में, क्योंकि आज सारा दिन आप इनके अमेजिंग वाले गाने जो है वो सुनने वाले, तन तन तन तन दुरना, इट्स वो वाले सारे गाने। तो फिलहाल हिमेश रेशमिया के बर्थडे पर उनके गाने एंजॉय करते हैं और उन्हें रेडियो ऑलिव और मेरी तरफ से कहते हैं हैप्पी बर्थडे। आप अपनी कशिश के साथ जो है वो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और तेरा सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबेरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

जावेद अली की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. एंड कलंक मूवी के सारे गाने बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस गाने को मेरा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार तो हमेशा मिल ही जाता है. वेलकम जी, गुड आफ्टरनून हो गया नहीं, गुड मॉर्निंग. क्या है ना कि बाहर धूप इतनी ज्यादा है कि आफ्टरनून बोलने का मन कर जाता है. कोई बात नहीं, चलिए. सो मैं हूँ आपकी कजू शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड वक्त हो गया है आपको स्ट्रेस से निजात दिलवाने का. तो देखिए, स्ट्रेस को जो है कम करने का सबसे एक बढ़िया तरीका यह है कि आप प्रिटेंड कीजिए कि आप एक सेलिब्रिटी है एंड प्रेस जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही है. एंड आपको जो है ऐसे जवाब देना है कि देखिए मुझसे क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है, क्या है आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में चल रहा हूँ. और अपने स्ट्रेस की वजह जो है वो पूरी प्रिटेंड करते करते बता दीजिए. अब ये आप जो है जब आप शावर ले रहे हैं तब भी कर सकते हैं. शैम्पू की बॉटल को माइक बनाइए और शुरू हो जाइए. बस इस फ्रेश तरीके के साथ जो है एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो भी आपको सुना देती हूँ. इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो रेगुलेट हो जाएगा.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:13। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhor.
5: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
6: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: कभी हाँ कभी ना मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया। शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस अगर मुझे किसी मूवी में लगी हैं तो वो कभी हाँ कभी ना में लगी है। अगर शाहरुख खान की मूवीज की हम बात करते हैं तो अक्सर DDLJ की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम है, लेकिन ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जो एक बार अगर आप शाहरुख खान फैन हैं, आप शाहरुख खान को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो आपको देख लेनी चाहिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर हम आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यार, अगर आप वीकेंड पे जो है ये सोच रहे थे कि यार क्या किया जाए, तो सबसे पहला रिकमेंडेशन तो मैंने आपको यहीं दे दिया, कभी हाँ कभी ना देख लो या शाहरुख खान की कोई भी अंडर रेटेड मूवी उठाओ और वो देख लो, आपका दिन बन जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ओके चलो फ्राइडे जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, कहीं इन्वेस्ट हुआ है। सो बस देखो ये कर सकते हो, लेकिन आज जो है मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने आई हूँ। सो देखो वीकेंड जो है वो आ चुका है, आज वीकेंड दस्तक दे देगा, जैसे ही जो है 5:30 बजे का जो है कांटा आएगा घड़ी का, वैसे ही हमें जो है ऐसा लगेगा कि ओ भाई वाओ वी आर नाउ फ्री, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो क्या कुछ करने का प्लान है एंड आपके हिसाब से जो फ्राइडे है हमारा वो जो है उसका मेजर टाइम क्या करने में चला जाता है, क्योंकि अक्सर वीकेंड जो है वो आता है और एकदम फुल स्पीड से चला जाता है। सो आपका वीकेंड जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे चला जाता है ये आपको मुझे बताना है 3311063 पर मुझे मैसेज करके। सो जल्दी से अपना फ़ोन उठाओ 3311063, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर जल्दी से आप बता दो। वैसे कुछ मेरे पहले के सवाल थे जिस पे लोगों ने ऑलरेडी आंसर किया हुआ है, सो उसका भी हम जवाब दे देते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज जो है हिमेश रेशमिया जी का हैप्पी वाला बर्थडे है, जिसपे हम आपको उनके स्पेशल गाने जो है वो भी सुना रहे हैं। सो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है मेरे सवाल का सही सही जवाब दिया है। मैंने जो है पूछा था कि हिमेश रेशमिया का ऐसा कौन सा गाना है जो मेरे नाम पर बना हुआ है, सो गाने का नाम है आपकी कशिश सरफरोश है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब। देखिए मोहम्मद यूसुफ जी जो है वो अच्छे से जानते हैं, उन्हें ये भी पता है कि मेरे भाई का नाम अरमान है एंड उस पे भी जो गाना है हिमेश रेशमिया जी का वो बना हुआ है। सो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी कशिश जो है वो मैसेज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ आपकी कशिश। फिलहाल आप मुझे बताइए कि वीकेंड का सबसे ज्यादा वक्त जो है वो क्या करने में गुजर जाता है 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Cool song.

जो है इन्होंने कहा है तो करना पड़ेगा यार, दिलेर पाजी को कौन मना कर सकता है। देखो तो नाचते गाते आ गई हूँ मैं आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए। वेलकम, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ 106.3 रेडियो आलू पर। और देखिए यार, वीकेंड जो है उसकी वाइब फुल ऑन है। सो बस आपसे मैंने ये पूछा था कि यार वीकेंड पर जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो किस चीज़ में चला जाता है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार मुझे तो सो के उठने में ही इतनी देर लग जाती है कि आधा फ्राइडे निकल जाता है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि आधा फ्राइडे जो है वो ये डिसाइड करने में निकल जाता है कि आखिर आगे करना क्या है, करना क्या है, फ्राइडे को जो है क्या किया जाए, ये सोचने में आधा फ्राइडे निकल जाता है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि यार कशिश, काम करने में आधा टाइम निकल जाता है और उसके बाद जब रियलाइज होता है कि काम भी नहीं हुआ और दिन भी चला गया। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जो बहुत ज़्यादा मेरी वाइब से मैच करता है, क्योंकि मैं जो है सिर्फ दो बर्तन धोती हूँ और दिन चला जाता है। पता नहीं मेरी स्पीड जो है वो कम है या फिर बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आप भी मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके कि यार आखिर आपका वीकेंड जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गुजर जाता है। फिलहाल बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि यार कशिश ब्यूटीफुल वॉइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच। आप लोग भी ऑडियो नोट भेज दीजिए, मैं भी आपके लिए कहना चाहती हूँ कि ब्यूटीफुल वॉइस फ्रेंड। फिलहाल ब्यूटीफुल वॉइस में जो है एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर सोनू निगम की आवाज़ में, सो इसे इंजॉय करो और बाकी जल्दी से लौट के वापस आओ क्योंकि बहुत सारी बातें करना अभी बाकी है। वैसे आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सी मूवी है जो आप देख सकते हो इस वीकेंड पर, वो रिकमेंड करूँगी मैं आपको। आपके अगर कोई मूवी रिकमेंडेशंस है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

देखो यार, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? तुम्हें कितना प्यार करते हैं? आपको जितना प्यार मुझे करना है आप उतना प्यार कर सकते हो, कौन रोक रहा है आपको? Welcome back, 106.3 Radio Oliver. मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए लाइफ मस्त है शो जो है लेकर आ गई हूँ. एंड अगर आप भी जो है इस बात से परेशान हैं कि इस वीकेंड पर जो है क्या देखा जाए, कैसे अपने टाइम को पास किया जाए, टाटा बाय बाय बोला जाए, क्योंकि यार मूवी देखने के बाद रियलाइज होता है कि यार ये मूवी तो देखने लायक ही नहीं थी. अब दिन भी चला गया, टाइम भी चला गया, कुछ कर भी नहीं सकते, कोई और मूवी भी नहीं लगा सकते, वरना सुबह ऑफिस के लिए कैसे उठेंगे. तो बस मैं जो है आपका इस टाइम को वेस्ट होने से बचा सकती हूँ. सलाम बॉम्बे मूवी जो है आपको सर्च करनी है, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी. ये मूवी जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो आपको लाइफ में कोई एक कुछ एक चीज़ ऐड ऑन करे, सिर्फ आपको हंसा के ना छोड़ दे, तो फिर ये वाली मूवी आप देख सकते हो. बल्कि अगर बाकी अगर हंसने खेलने वाली मूवीज़ तो मैंने आपको कितनी सारी बता ही रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं. कल ही मैंने बताया था आप रॉकेट सिंह मूवी जो है वो देख सकते हैं, रणबीर कपूर की अगर आप फ़ैन हैं तो आप ये मूवी बिल्कुल से देख सकते हैं. बिलाल सलाम बॉम्बे आज की मेरी रिकमेंडेशन है, रियल लाइफ कैरेक्टर्स से रिलेटेड है एंड रियल लाइफ एक्टर्स भी है. मतलब रियल लाइफ एक्टर्स नहीं है, मतलब रियल लोगों को लेकर जो है मूवी बनाई गई है. कोई इसमें ऐसा एक्टर नहीं है जो कि ट्रेंड हो. सो एक बार जाके जरूर देखिएगा, और कैसी लगी ये मूवी मुझे आके जरूर बताइएगा 3311063 पर. फिलहाल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए. फिर जरा आने के बाद फैशन की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे.

0: fresh song of the hour.
1: Yegana.
2: तो ये गाना एंजॉय करके आओ और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: ना मुझे ना बहुत ज्यादा छींके आ रही है एक के बाद एक. आपको आवाज समझ सुन के जो है समझ भी आ रहा होगा कि मेरी छींके जो है वो बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल करके रखी है अभी आपसे बात करने के लिए. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसूसन. सो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए हम जो है कोशिशें जारी अपनी रख रहे हैं. लेकिन देखिए अब वक्त हो गया है फैशन की थोड़ी बातचीत करने का. एंड क्योंकि मुझे छींक बहुत आ रही है एंड यहाँ पर जो है मैं टिश्यू पेपर बहुत यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ना बचपन का टाइम याद आ गया जब मम्मी जो है एक ट्रायंगल में जो है मेरे रुमाल को करके पिन से मेरी स्कूल की शर्ट की पॉकेट पे लगा देती थी और मैं उसे जो है रोज़ अपने हिसाब से जो है बदल बदल के जाती थी कि यार आज ना पिंक लेस वाला रुमाल है, आज ब्लू कलर का है जिसपे रेड फ्लावर बने हुए हैं, पिंक फ्लावर बने हुए हैं, कई बार कार्टून वाला भी होता था. सो वो एक फैशन स्टेटमेंट था जब आप यूनिफॉर्म पहनते थे तब. कभी कभी जो है वो थोड़े बड़े होने के बाद एम्बैरेसिंग भी होने लग गया था, लेकिन अब जो है ये ट्रेंड वापस आ रहा है. नहीं, अपनी शर्ट से जो है शर्ट पे लगाने वाला ट्रेंड नहीं, लेकिन रुमाल रखने का ट्रेंड जो है वो वापस आ गया. बीच में गायब हो गया था, काफ़ी सारे लोग हैंकरचीफ जो है वो नहीं कैरी करते थे, लेकिन अब ये एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी बन गया है. आप लोगों को एम्ब्रॉयडर जो है उनके नाम से या कुछ लिखा हुआ अगर आप हैंकरचीफ देते हैं तो एक बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन हो जाता है. और अब ये एक एक्सेसरी की तरह काम करता है. आप अपने बैग पर जो है उसे टाई कर सकते हो, आप जनरली उसे कैरी कर सकते हो, उसे और टेबल पे रखने का जो है काफ़ी ट्रेंड आ गया, लोगों को दिखाने का, सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का भी काफ़ी ट्रेंड हो गया है. सो अगर एक अच्छा हैंकरचीफ आपके पास नहीं है तो ले सकते हो, और अगर गिफ्ट करने का किसी को सोच रहे हो तो वो भी कर सकते हो. फिलहाल गिफ्ट से याद आया हमारे बर्थडे बॉय हिमेश रेशमिया का एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. सो इस गाने को एंजॉय करो और फिर आने के बाद थोड़ी और बातचीत जो है वो जारी रखेंगे. स्टे ट्यून्ड और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.
1: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और तेरा सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश. सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक.

0: trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:14, दैट इज 12:14. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
3: Socho, agar सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ.
6: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ,
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM,
6: ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ.
7: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ.

0: प्ले लिस्ट में आज सोनू निगम के बहुत सारे गाने दिखाई दे रहे हैं मुझे, और आई एम डैम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के फेवरेट सिंगर सोनू निगम होंगे, तो काफी इंजॉय कर रहे होंगे मेरी प्ले लिस्ट को. जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम काम कर रहे हैं. सो देखिए यार, वक्त हो गया है आपको फैशन की दुनिया में क्या कुछ इस वक्त खास चल रहा है उसके बारे में बताने का. सो रिसेंटली मैं जो है मेरी मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे जो है मैं थी एंड स्क्रॉल कर रही थी, तभी मैंने देखा कि यार यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ये अपनी टी शर्ट पे पेंट क्यों गिरा रहे हैं, एंड पहनने के बाद गिरा रहे हैं, एंड उसके बाद टी शर्ट उतारने के बाद उसको फैला भी रहे. सो एक्चुअली एक नया ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर आप अपनी पुरानी या बेसिक जो प्लेन टी शर्ट्स हैं उन्हें पहनने के बाद उस पर जो है पेंट ड्रॉप करते हो ऊपर से, एंड उसके बाद उसको फैला देते हो. सो इससे क्या है, एक यूनिक प्रिंट बन जाता है, एंड कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि ओ चलो हमने कुछ बनाया. सो पिछले दो दिनों से जो मैं आपको DIY बता रही हूँ कि आप अपनी जीन्स पे राइनस्टोन लगा सकते हैं, या फिर बैक स्ट्रैप को जो है अपनी वॉच के डायल्स की एक चेन से जो है रिप्लेस कर सकते हैं, अगर ये सब करने के लिए आप के पास जो है वो क्राफ्ट वाली स्किल्स नहीं है, तो आई एम डैम श्योर देखो ये पेंट तो अपनी शर्ट पे आप गिरा ही सकते हो. या देखो एक जो है बहुत पते की मैं बात बोलने वाली हूँ, अगर कभी पेंटिंग करते हुए कोई टी शर्ट खराब हो गई है तो उसको अभी पहन डालो, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ट्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो. फिलहाल मैं हूँ आपकी कशिश, कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इस जो है गाने को इंजॉय करो. काली काली जुल्फों के, ओ माई गॉड क्या गाना आने वाला है. सो इस गाने को इंजॉय करो, बाकी थोड़ी सी देर में और बातचीत जो है जारी रखेंगे. स्टे ट्यून, और आपकी के साथ कहते रहो जी गोविंदास.
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. Awesome.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनो हाइपरमार्केट में।
2: लूनो, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
3: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
3: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
3: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस

गाइस इन्होंने तो कह दिया कुछ ना कहो, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी तो मेरा जो है खाना हजम कैसे होगा, मुझे जो है कैसे अच्छा लग पाएगा अगर मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगी तो ये वाली बात तो हम इनकी देखो नहीं मान सकते। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को थोड़ा और एक्स्ट्रा मस्त बनाने का। अब देखो यार, आपकी लाइफ को मैं जो है हर रोज आकर मस्त बना देती हूँ, 3 घंटे अपना शो जो है वो करती हूँ, जिसपे आपके साथ बहुत सारा वक्त बताती हूँ, गाने सुनाती हूँ आपको, फैशन की बातें बताती हूँ, मूवीज से रिलेटेड चीजें बताती हूँ, लेकिन इसके बाद क्या वीकेंड पर आप मुझसे कैसे मिल सकते हो? वैसे देखो वीकेंड पे भी मेरा शो आता है शाम को 4 बजे से, आप टेक टॉक जो है वो सुनकर जो है मेरे साथ फन कर सकते हो, एंड साथ में अगर आपको सोशल मीडिया पे भी जो है हमसे मिलना है तो आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर वहां पर फॉलो बटन दबा सकते हो, वहां पे हमारा अमेजिंग कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिलहाल अमेजिंग गाने अगर आपको सुनने तो यहीं पर आपको चिपक के रहना पड़ेगा। गैंगस्टर मूवी से एक बहुत ही अमेजिंग गाना मैं आपके लिए जो है प्ले कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

किसी को इस वावा बूम का मतलब पता चले तो मुझे भी बता देना, मैं मुझे भी इंजॉय करनी है लाइफ वावा बूम करके। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिशन, आप मेरे साथ लाइफ मस्त शो इंजॉय कर रहे थे, हाँ जी थे, क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया, आपको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया। सो मैं चलती हूँ, मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे अपने टेक वाले शो पे। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ 106.3 रेडियो ऑलिव पर कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल बहार, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुख वाकिफ अलखोर।
4: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापस आ गया है। रेडीमेड गारमेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुलु हाइपरमार्केट में।
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
0: Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta, non-stop, back to back.

जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई चलिए कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ऑलिव रिचार्ज और आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक बहुत ही वियर्ड बात मैं जरा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। देखिए, हम सब जानते हैं जोरों शोरों से जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 खत्म हो चुका है। स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा दिया है। हारने के बाद अर्जेंटीना ने जो कुछ किया, अगर हम देखें तो यार थोड़ा शर्मनाक महसूस जरूर होता है, मगर होस्ट कंट्री ने जो किया उससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। ऐसी एक खबर हमारे हाथ में आई है जो सुन के आपके होठों पे मुस्कुराहट तो आएगी नहीं, मगर आपके सोच में जरूर एक सोच आएगी कि भाई ये क्या बात होती है, वो कौन सी खबर है, ऐसा क्या कर दिया। ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और अपने मैसेजेस भेजते रहिए 3311063 पर। फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: Awesome।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक काफी वियर्ड चीज आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, सरफेस लेवल पे काफी वियर्ड जरूर लग सकती है, मगर अगर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो पता चलेगा कि काफी नॉर्मल चीज है। हम जानते हैं कि स्पेन जो है 2026 फीफा वर्ल्ड कप विनर है। 16 साल के बाद स्पेनिश टीम ने ट्रॉफी जो है अपने हाथ में लिया और अर्जेंटीना को हराया। काफी डोमिनेटिंग प्ले था, मगर प्राइज मनी के मामले में अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा एक कैच है। $50 मिलियन जो है मिले हैं विनिंग टीम को, बट उसमें से कुछ परसेंटेज जो है US को, यानी कि होस्ट कंट्री को देने पड़ेंगे, क्योंकि वहां के टैक्स लॉस ऐसे कहते हैं। सोच के देखिए यार, इतना सब कुछ करके तुम फाइनली वर्ल्ड के बेस्ट टीम बन जाते हो, तुम्हें उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, प्राइज मनी दी जाती है, और उसमें भी टैक्स, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, हो तो सकता है, US में हुआ तो जरूर हो सकता है। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ते हुए, आपकी कल्पना की ओर छोड़ते हुए, हम जरा आगे बढ़ते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।
1: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज, ऑलिव रिचार्ज,
3: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
2: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे यार मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, गर्मी का मौसम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, क्योंकि गर्मी का नाम सुनते ही हमारे दिल भी दहकने लग जाते हैं। जब गर्म हवा का भपका लगता है तो अच्छी अच्छी यादें बुरी यादें बन जाती हैं भाई, मैं समझ सकता हूं। मगर गर्मी के टाइम पे अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने ख्याल रखने में जो स्टेप्स आप इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, उनके बारे में मैं जरा बात करना चाहूंगा। सबसे पहला बेसिक चीज है हाइड्रेशन, जो हमने कई बार सुना है। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि पानी पीते रहिए, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर पानी पीने के साथ साथ कुछ ऐसे फूड हैं जो हमें सही में बहुत ठंडा महसूस करवा सकते हैं अंदर से, तो आप जरूर उनको भी अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। और लाइट फूड इस टाइम पे बहुत आपको हेल्प करेगा। हैवी फूड जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर अंदर से भी बढ़ा देगा, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर बहुत गर्मी है और आपको एक्सरसाइज करना है, अगर आप एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हो, मेक श्योर कि आप एक लाइट एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करो जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस दिन ऑलरेडी हमारी एनर्जी जो है ये गर्मी चूस के निकाल लेती है, तो बची कुछ एनर्जी को ज़्यादा खर्च ना करें। इसलिए लाइट एक्सरसाइज, लाइट मूवमेंट वाले एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका रूटीन बना रहे, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब सोच के देखिए भाई, इतनी बढ़िया बातें कौन बताएगा आपको? मैं ही तो बताऊंगा, और भी ऐसे बातें बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास
2: ओले लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आजकल के जमाने में 2026, देखिए ज्यादा स्क्रॉल करोगे तो यही होगा आपके साथ, ब्रेन रॉट हो जाएगा, कौन सा साल चल रहा है ये भी भूल जाओगे। तो 2026 में ऐसे दो एडिक्शंस के बारे में हम बात करना चाहेंगे जो सही में एक इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी हिंट मैंने आपको दे दिया है, वो है सबसे पहला एडिक्शन, विच इज स्क्रोलिंग। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप स्क्रोल करते रहिए, स्क्रोल करते रहिए। हाथ की लकीरें मिट जाएंगी मगर स्क्रोल करते रहिए। कंटेंट खत्म हो जाएगा मगर स्क्रोल करते रहिए, क्योंकि कंटेंट की कमी तो है नहीं, कोई ना कोई तो कंटेंट निकाल ही देगा। तो मगर इस स्क्रोलिंग का कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। ये हमारे को नुकसान बहुत ज़्यादा देता है। एक तो डोपामाइन को, जो है हमारे डोपामाइन रिलीज सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से ये मैसअप कर देता है, इसलिए हमें जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी खुशी फिर नहीं मिल पाती। हम काफ़ी खोखला महसूस करने लग जाते हैं, अधूरा महसूस करने लग जाते हैं। तो स्क्रोलिंग एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जो सही में इंसान को बर्बादी के कगार तक लेके जा सकता है। पहले पहले बोलते थे कि धूम्रपान नहीं करना है या फिर और सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस की ओर तुम्हें नहीं जाना है, मगर आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि थिएटर्स में एक और डिस्क्लेमर आना चाहिए कि फ़ोन को स्क्रॉल करना भी मना है ज़्यादा देर तक। काश ही आ जाए यार, मज़ा आ जाएगा। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ेंगे, गानों के उस पार हम आएंगे और दूसरे एडिक्शन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए जियो बिंदा।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम दूसरे एडिक्शन के बारे में बात करना चाहेंगे जो सही में एक इंसान को बर्बादी के कगार तक पहुंचा सकता है।

पहला हमने बोला स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग, जो सही में इंसान को बर्बाद कर सकता है मेंटली, और दूसरा एडिक्शन जो हमारी जिंदगी में एक बहुत ही छोटे डाउट की तरह आता है मगर धीरे धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है, वो है कंपैरिजन। हमें लगता है कि बाकी सब बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, बाकी जिंदगी जो लोग जी रहे हैं वो है जिंदगी, हमारी जिंदगी तो कुछ नहीं है, बाकी सब एकदम मस्त तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं है भाई। जितना हम कंपेयर करेंगे अपने आप को दूसरों से, उतना जो भी हमारे पास है उसको तो हम निगेट करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ मेंटली अननेसेसरी स्ट्रेस अपने ऊपर और डाल देंगे। देखिए, मेरे से एक बार किसी ने बोला था कि भाई वेट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला अपना फिजिकल वेट कम करने के साथ साथ जो मेंटल लोड हम कंपैरिजन के थ्रू रख लेते हैं ना, वो भी कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा वेट है जो दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। और एक बहुत ही महान इंसान ने पहले बोला है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय करके, तो जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है उसको जब हम कंपेयर करने लग जाएं या फिर कंपैरिजन के दायरे में डाल दें तो फिर भाई मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। और ये मैं बचपन से अपने मम्मी पापा को बोलता था कि यार मार्क्स कम आए तो क्या हुआ, कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप लोग, जो आए बढ़िया आए, मगर वो उस टाइम पे मेरी बात को समझते नहीं थे, अब भी नहीं समझते, पर दुख नहीं है इस बात का। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

भाई एक वर्ल्ड कप खत्म क्या हुआ, दूसरा भी शुरू होने वाला और वो भी स्वादिष्ट वाला। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बात कर रहा हूं द तिरामिसू वर्ल्ड कप के बारे में, जहां पे 100 ऑफिशियल जजेस को चुनने की बात हो रही है जो एक अल्टीमेट तिरामिसू को चूज करेंगे। और यहां पे एक कैच इन्होंने बताया है कि आपको एक शेफ या फिर बेकिंग एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। जो भी जजेस चुने जाएंगे उनको टेस्ट करना पड़ेगा और इवेल्युएट करना पड़ेगा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ तिरामिसू को, ताकि इनमें से सबसे टॉप, सबसे बढ़िया, अव्वल दर्जे वाला तिरामिसू कौन सा है बताने के लिए। तो ये इवेंट जो है इटली के मोस्ट आइकॉनिक स्वीट को सेलिब्रेट करने वाला एक इवेंट है और डेजर्ट लवर्स के लिए काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है अपने पैशन को एक पेड रोल में बदलने का। अब जैसे ही मैंने बात की है, मुझे कुछ कुछ लोगों का चेहरा मेरे मन में आ चुका है कि कौन इसमें जा सकता है। पहला तो मेरा ही है वैसे बट या आप बताइए, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कौन है जो इस तिरामिसू वर्ल्ड कप के जजेस पैनल में जा सकता है। 3311063 ये है नंबर, मैसेज कीजिए मुझे, बताइए मुझे। फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे. लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है. रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं. स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूना हाइपरमार्केट में.
2: लुलु, where the world comes to shop.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ. विजिट कारमिल ग्रुप नाउ.
6: Hi Radio Olive 106.3 listener. This is Shah Rukh Khan.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Akshay Kumar.
9: Hi, this is Anushka Sharma.
10: And I'm Arshul Varsini.
11: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। ये है ऑलिव रिचार्ज, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक छोटा सा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बात है उस टाइम की जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में था, एग्जाम चल रहे थे। एक दिन मैं सो रहा था और थोड़ा बुरा सपना था, ठीक है। सपने में मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा जो मुझे डरा रहा था, मतलब ऐसा खौफनाक सा एक मंजर था वो सपना। और एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के वाइट वॉकर जैसा दिखता था, ठीक है। नीली नीली आंखें घूर रही थी मुझे और मैं डर गया था, सच बताओ मैं डर गया था, ठीक है। डरने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना आंख बंद कर लेता हूँ। मैं अब सोच के देखिए, मैं सो रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आँख बंद कर लूँ। पर एकदम से मेरे अंदर ने एक आवाज़ आई, उस आवाज़ ने बोला कि आँख बंद मत कर, अगर तूने आज इससे आँखें मूंद ली तो फिर तुझे ज़िंदगी भर आँखें मूंदनी पड़ेगी, वापस देख। तो मैंने हिम्मत जुटा के ऐसे तैसे मैंने वापस देखना शुरू किया और धीरे धीरे धीरे जैसे मैंने देखना शुरू किया तो मुझे भी फील होने लग गया कि मेरे अंदर भी ताकत आ रही है, मतलब ऊर्जा जो है बढ़ रही है। और धीरे धीरे वो डरावना सा चेहरा जो था वो पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे होता गया और चला गया और मैं उठ गया। और एकदम से मुझे याद आया, मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत ही छोटी सी बात बताई थी बचपन में, वो ये था कि जब भी किसी से बात कर रहा हो तो आँखों में देख के बात किया करो, चाहे वो तुझसे बड़े हो, छोटे हो, तेरे लेवल के हो, हमेशा आंखों में देख के बात किया कर। चाहे तुझे डर लगे ना लगे तब भी आंखों में देख के बात किया कर। तो वो एक छोटी सी सीख एकदम से उस सपने ने कहीं ना कहीं याद आ गई। मगर मैं आपको यही बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कभी कभी लाइफ में ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मुश्किल हो रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि मुश्किलात की आंखों में आंखें डाल के देखो और बोलो कि मुझे क्या आजमाएगा तू। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर
1: योर स्पेशल ऑफर
2: हाँ ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ
1: वाह ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है
2: बिल्कुल मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 Also, visit our dental centers in Azizia or Muntaza. Naseem Surgical and Medical Center. Healthy smiles anytime.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बताना चाहूंगा ओडिसी के बारे में। भाई मैंने वो मूवी देखा और मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं या फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कैसे कर लेते हैं क्रिस्टोफर नॉलन ये बिना सीजीआई का इस्तेमाल किए, बिना ऐसे मॉडर्न ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए वो इतने स्टनिंग विजुअल्स लेकर आए हैं। और भाई जब वो मूवी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्निकली वो मूवी बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत काम लगेगा उसमें, मगर इतना बढ़िया है, उसके विजुअल्स इतने मस्त, यार क्या बताऊँ मैं, मेरी आंखें चौंधिया गई, मैं मुंह मेरा खुला का खुला रह गया, पॉपकॉर्न बाहर आ गया बोल के कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, इतने बढ़िया विजुअल्स। और स्टोरी देखिए, स्टोरी जो है ऐसा नहीं है कि कोई नई स्टोरी है, स्टोरी ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, मगर एक अलग टेक के साथ जो है वो आया है। और स्पेशली इसमें एक सीन आता है जहाँ पे एक मोनोलॉग आता है, मैं बताऊँगा नहीं आपको, ठीक है, कोशिश करें तो जाके देख लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा आपको। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: और हो जा रिचार्ज
4: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
3: ऑलिव रिचार्ज.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और तेरा सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर। उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। 3 घंटे जो हैं बहुत जल्दी निकल गए, पता भी नहीं चला। बट कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, हम फिर मिलेंगे आपसे गुफ्तगू करने के लिए, बात करने के लिए। तो इसी सीट पर आएंगे आपके साथ बात करने के लिए, मिलेंगे फिलहाल कुछ दिनों बाद, क्योंकि वीकेंड आ रहा है। तो एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से वीकेंड स्पेंड कीजिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। रेडियो

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आपके साथ। शो के पहले गाने के साथ आपको पता लग गया होगा कि आज की वाइब जो है वो क्या होने वाली है। देखो, वाइब वैसे सेम ही रहती है मेरी, एकदम मस्त वाली, लेकिन आज जो है वो वाइब थोड़ी सी और सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि

0: ايه جي بدايه ميدايه ده بازار بتاعكه
1: فوز عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه
0: और बताओ क्या हाल चाल है, कैसा रहा आपका आज का दिन। अभी चार घंटे अपने मने होने वाले हैं, 9 बजे तक रहूंगी आपके साथ। कुछ भी कहना है, अपने पूरे दिन के बारे में बताना है, कुछ वेंट आउट करना है, किसी की चुगली करनी है, गॉसिप करनी है, आई एम योर फ्रेंड यार। फटाफट से आप मुझे फटाफट से मैसेज कर दो 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, याद रखना, भूलिएगा मत जैसे मुझे नहीं भूलते। यही तो खासियत है आपकी, ये गाना भी तो यही कह रहा है दोस्त। 4321 एंड गो।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Hi, Radio Olive.
4: Radio Olive.
3: 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
4: Shah Rukh Khan.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
11: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: सब चाहते हैं कि वीकेंड चालू हो जाए। आपका तो हो गया दोस्त, सही है यार, पर पूरा दिन आपने इसका इंतजार किया और पूरा हफ्ता। चक्को जी जैसे ही थर्सडे आता है मतलब आपको पता है कि आज तो वीकेंड वाली नाइट है। ये चीज हर हफ्ते हमको मिलती है वीकेंड, लेकिन ऐसी हर बार जो है वो ऐसा लगता है कि पहली बार ये चीज जो है वो हो रही है। सो हैप्पी वीकेंड गाइज, क्या हाल है आपके और आपके वीकेंड के जो है वो क्या प्लान है? हम भी ऑफिस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जैसे ही थर्सडे में सब लोग ऑफिस आते हैं तो एक दूसरे से ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आज क्या करने वाले हो, आज का प्लान क्या है। सो अगर किसी का नहीं भी प्लान बन रहा है तो भी बना देंगे हम, उसको ऐसा फील करवा देंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो जरूर करो। देखो बात सिर्फ ये नहीं है कि बाहर निकलना, पार्टी करना, ये करना, यही प्लान होता नहीं है। प्लान आपका ये भी हो सकता है कि सोना है रज के, या फिर घर की सफाई करनी है रज के, या फिर यार घर का खाना पका के खाना है क्योंकि बाहर से खा रहे हैं, ये भी प्लान है अपने आप में। जो मर्जी करो, जो चीज आपको खुशी देती है वही प्लान है, वही आपका सेलिब्रेशन है वीकेंड का। सो बता सकते हैं आप मुझे 3311063 पर। और आज हिमेश रेशमिया का क्या प्लान होगा? पार्टी करेंगे यार, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। तो आज पूरा दिन हर शो में उनके बहुत ही स्पेशल वाले गाने जो है वो चल रहे हैं। हिमेश रेशमिया प्लेबैक सिंगर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, सॉन्ग राइटर भी है, प्रोड्यूसर भी है, एक्टिंग भी की है। भाई वो अलग बात है कि एक्टिंग संभल नहीं पाई, बट इनका जो म्यूजिक की चीज है ना, म्यूजिक का करियर जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, तो इसीलिए गाने आप उनके स्पेशल सुन रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: शॉपिंग से ज्यादा स्मार्ट क्या है? शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लुनो हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है, क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लुनो हाइपरमार्केट में।
1: लुलु, where the world comes to shop. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
1: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: कूल ट्रैक राइट. मुझे ना छोटी छोटी चीजें जो है वो खुश करती हैं. और आज जब मैं सुबह उठी तो क्या होता है कि जब आप अपना फोन, मैं अपना फोन का इंटरनेट बंद करके सोती हूँ मोस्टली, है ना. सो जब आप इंटरनेट ऑन करते हो, जब आप उठते हो, तो आपको बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आए होते हैं. सो आज एक मैसेज आया था जिसने, वैसे तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सो मेरी स्क्रीन पे शो हुआ. और मैंने पहला मैसेज पता कौन सा देखा था, किसी लिसनर ने लिखा हुआ था, कहते कि मुझे पता है कि कड़क चाय में तो इतनी एनर्जी होती नहीं है, पर कहाँ से लाते हो यार. मतलब वो आई डोंट नो, आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं. तो आज मेरे मतलब सबसे पहला मैसेज जो था वो ये वाला पड़ा और मेरे दिल को ना बड़ी खुशी हुई. तो किस तरह से आपका एक अच्छा मैसेज किसी का, है ना, एक अच्छा थॉट जो है या फिर एक अच्छी कॉल जो है वो आपका पूरा दिन अच्छा बना सकती है. सो कोशिश करो कि आप भी अपने जो खास हैं उनको आप इस तरह के मैसेजेस भेजो, ताकि उनका दिन जो है वो भी अच्छा जाए. और जिनका आज बर्थडे, उनका दिन भी आज बड़ा अच्छा जाने वाला है. हिमेश रेशमिया के साथ शेयर कर रहे हैं हमारे एक लिसनर जिनका नाम है रहील जॉन. सो मैसेज आया मुझे, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे, सिमरन ऑन एयर विश कर दो. तो रहील जॉन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं गजब बधाइयां, मिठाइयां दे, बहुत सारे पटाखे थोड़ी देर में आपके लिए. क्या किया,
1: कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया.
2: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और तेरा सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर,
3: तेरा तेरा तेरा सुरूर,
2: उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश. सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
1: Shackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: Zabardust evening. Make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alukas. Joy Alukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

हाँ जी बर्थडे है तो गोज आगे ऐश कर लो, कोई चक्कर नहीं है। उसमें क्या है कि जो एंट्री लेवल के थे यू नो यूनिट वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि $450 में थे। जो हाई टायर कलेक्शन एडिशन हैं वो जो है वो $3,000 में जो है वो आपको मिल रहे हैं। और ये कहाँ पे मिल रहा है आपको? फीफा स्टोर जो है ना ऑफिशियल, वहां पर आपको मिल रहे हैं। सो बताइए अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप फिनाले की ग्रास चाहिए पीसीज में तो आपको मिल जाएगी। भाई मैं सोच रही हूँ कौन खरीदेगा यार, और करेंगे क्या खरीद के उसके बाद? आप बताइए कि आप फीफा वर्ल्ड कप की जो ग्रास थी उसको आप खरीदना चाहेंगे? 3311063 पे मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दिल में ऐसा क्या चल रहा है जो कि आप खरीदना चाहेंगे उसको।

0: 106.3 FM, Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा Kuban or Mega Draw Ticket.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.

इतने प्यार से बुलाओगी तो कैसी नहीं आऊंगी। आए होए अगर आपने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी कि आपने मुझे मैसेज अभी तक क्यों नहीं किया है, क्या सोच रहे हो यार। और एक चीज मैं सोचती रहेगी और मेरे दोस्त लोग जो है वो कर रहे, तो फिल्म है दी ओडीसी, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग जो है वो बात कर रहे हैं, भाई मास्टरपीस है, कहते बहुत बढ़िया फिल्म है। तो समहाउ अब मेरा दोस्त लोग है वो तो सुबह जल्दी उठते हैं ऑफिस के लिए, इसलिए अगर उनको वीकडे पे मूवी जाना है तो वो जल्दी ही जाएंगे, तो मेरी टाइम मैच नहीं हुई मेरे ऑफिस के साथ, तो वो लोग देख के आ गए हैं और सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बढ़िया मूवी है यार, अब मेरे को फोमो हो रहा है, मेरे को जाना ही जाना है यार इस वीकेंड में इस फिल्म को देखने के लिए। आप में से अगर किसी ने देख लिया तो बताइएगा मुझे कि आपको कैसी

0: कर के दे रोची हो बिंदास।
1: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: Socho. अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
4: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
5: Hi, main hu Sarika.
6: Sarika.
5: Radio. Aap mujhe sun rahe hain Radio Olive 106.3.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: Radio Olive. I'm a number one.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
9: आरजे सिमरन के साथ
10: Zabardast evening. Make your drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

दिल की हुई मेरा शोर करे लेकिन अभी आप बता नहीं पाएंगे तब आपका दिल जो है वो शोर करता है। जब आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं वो भी होता है, मतलब बहुत सारी हालत में आपका दिल जो है वो शोर करता है। 6:21 और 22 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस में भी आपका दिल जो है वो शोर करता है। फिलहाल तो सारा शोर जो है वो इस मौसम का, हर कोई एक दूसरे से ये बोल रहा है कितनी गर्मी है यार, और मलयाली में क्या बोलते हैं, इन द चूड़। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे बताना मैंने सही बोला है। मौसम वेदर का हाल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। वेदर का हाल तो अच्छा ही है, हमारे लिए वो हाल जो है वो बुरा है। 42 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 43 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 48 डिग्री था एंड विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी जो है वो 29% है और वीकेंड पे भी यही बोल रहे हैं 47 के ऊपर जो है वो टेम्परेचर पहुंचने वाला है। सो गाइज अपना ध्यान रखो, हवाएं तो नहीं चल रही है, हवाएं चल रही है तो गर्म चल रही है।

0: बस थोड़ी देर में हाजिर होती हूँ, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी चले जैसे हवाएं सनन सनन तो नहीं चल रही है, गरम गरम जरूर चल रही है। जयवंत के 36 मिनट 42 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे
1: सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल,
0: हाय
1: देख के बस एक ही झलक, हो गए हम पागल।
0: सामने तो सिमरन गौरी है।
2: सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू, जद भी तेनू लब्बा ते मिल जे मेनू तू,
0: मैं ही मिलूंगी और कौन मिलूंगा।
3: रेडियो ऑलिव पर What the viral kya baat hai RJ Simran ke saath
4: What the viral ये बात है।
0: कुछ भी वायरल हो रहा है लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई बढ़िया लग रहा है। सो आजकल लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं डाइट कोल्ड ड्रिंक होती है ना, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ब्रांड का नाम लेने के हम पैसे लेते हैं, ठीक है। सो डाइट कोल्ड ड्रिंक है ना, उसके अंदर लोग वे प्रोटीन डाल के मिक्स करके पी रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अमेजिंग टेस्ट कर रहा है। अब मेरे को नहीं पता और ना ही मैं अपना प्रोटीन का एक स्कूप जो है वो इसके ऊपर खराब करने वाली हूँ। क्या आप करने वाले हैं? अप टू यू, मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ यार। सुन दे ये रेडियो ऑलिव करके दे रही है जियो बिंदास।

0: से ज्यादा स्मार्ट क्या है शॉपिंग जो आपको तुरंत रिवॉर्ड दे। लूना हाइपरमार्केट में आपको बिल्कुल यही मिलने वाला है क्योंकि हाफ पे बैक वापिस आ गया है। रेडीमेड गार्मेंट, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग या बेबी एसेसरीज पर 200 कतरी रियाल खर्च करें और तुरंत 100 कतरी रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर पाएं। स्मार्ट शॉपिंग करें, रिवॉर्ड पाएं, ज्यादा मुस्कुराएं, सिर्फ लूनू हाइपरमार्केट में।
1: लूनू, where the world comes to shop.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
1: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨੀ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਅਟ ਗਏ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਅਟ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਮਕੋ ਕਿਆ ਹੀ ਫਰਕ ਪੜਤਾ ਯਾਰ ਕਿਸੀ ਸੇ। जब समवन इज गेटिंग ऑन योर नर्व्स तो आप उसको बोलते हो कि भाई टेक सेवरल सीट्स, तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन गौराव के साथ है, वीकेंड का खुमार चढ़ाया हुआ है अपने सारे थे। और आपके वीकेंड के क्या प्लान है मुझे बता दीजिएगा 3311063 पर। जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Ye gana

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

क्या गाना है यार, ऐसे टाइम पे जब हम सब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। आई मीन अगर तो किसी की फैमिली है तो घर है यहीं पे, अगर नहीं है तो फिर सिमरन कौर थोड़े नाल 7:07 स्टूडियो की घड़ी पे ट्रिविया शिविया।

दुल्हन हम ले जाएंगे, ये फिल्म का टाइटल पहले ये नहीं था। इस फिल्म का नाम जो था ओरिजिनली यही बोलने मतलब रखा जाने वाला था, मुझसे शादी करोगी। जी हाँ, ये एक टिपिकल डेविड धवन फिल्म थी। एंड बट वो चाह रहे थे कि ये जो फिल्म है ना वो एकदम यशराज मूवी की तरह साउंड करनी चाहिए, दिखनी चाहिए, है ना। सो ये फिल्म जो थी एक फूल चार कांटे का रीमेक थी। 7:07 पे मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने ये फिल्म देखी है? अगर देखिए तो आपको ये फिल्म कैसी लगी थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फिल्म मैं देख नहीं पाई, मेरे से मिस हो गई, लेकिन इस फिल्म की तारीफ जो है बहुत ज्यादा हुई है। बट इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताना

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: हां जी स्टूडियो की घड़ी पे बेबी स्वाजी हिमेश रेशमी का हैप्पी वाला बर्थडे। ये जो आपने प्यार दिलों का मेला है और दुल्हन हम ले जाएंगे आज से गाना सुना, जिसके बारे में आज हम ट्रिविया शिविया में भी बात कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा म्यूजिक जो था वो हिमेश रेशमिया ने दिया था। सो और पहले मतलब जो थे उन्होंने डेब्यू किया था सोलो, एज ए सोलो कंपोजर उन्होंने फुल लेंथ बॉलीवुड साउंड ट्रैक जो था इसका क्रिएट किया था। एंड यस, आज हम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। करिश्मा कपूर की अगर हम बात करें, उनका जो नाम था सपना वो इस फिल्म में भी था, और हम साथ साथ में भी उनका नाम सपना था, जानवर फिल्म में भी सपना था, चल मेरे भाई में भी उनका नाम सपना था। तो या ये सलमान खान के साथ उनकी ये सेकंड लास्ट फिल्म थी बिफोर चल मेरे भाई। सो या इस फिल्म से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें मैं बातें करती रहूंगी, बातें बताती रहूंगी, लेकिन म्यूजिक जो है वो भी साथ साथ चलते रहना चाहिए बेबी। एक नंबर गाने जो आप लोगों के लिए चला रही हूं आज, जैसे मैं बता रही हूं कि हिमेश रेशमिया का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, तो कुछ उनके गाए हुए, कुछ उनके म्यूजिक से क्रिएट किए हुए गाने हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें से सलमान खान से उनका बहुत सारा प्यार है यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कर के, इधर ये जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।

0: टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: क्या कभी आपने अपने छाती पे, चेस्ट पे एक भारीपन महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ चल रहा है, आप कुछ किसी से कहना चाहते हो, आप किसी को बताना चाहते हो, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लग जाए? कभी कभी हम ये चीज जो है वो नहीं कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि वो चीज आपको अंदर से खाई जा रही है, आपका वो चैन जो है, नींद चैन जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। सो जब आपको लाइफ में ऐसा लगे कि जहां पर आपका डैमेज हो रहा है और वो चीज आप बाहर नहीं बोल पा रहे, वो चीज आपको बोल देनी चाहिए, क्योंकि वो जो बोझ है ना आपके अंदर, वो आप कितनी देर तक जितनी देर तक आप लेके रहते रहोगे वो उतना हैवी होता जाएगा। सो अगर आपके दिल में कोई बात है, किसी को कहनी है, आप वेंट आउट करना चाहते हो, डू इट बेबी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ।
2: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

हाँ जी सुरवे नाल गबरू नू प्यार हो गया, गबरू नू बहुत सारा प्यार हो गया, बहुत वधिया गल हैगी, लेकिन मैनू भी तुहाडे नाल बहुत सारा प्यार हो गया, इसे करके तो आपां करदे हां। डबल 3 डबल 1 1 0 6 3 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, 3 डबल 1 1 0 6 3 पे फटाफट से मैसेज लिख के भेजो। डेजी जी मुझे कनाडा से सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डेजी जी। शाहिद जी दलबीर जी, महमूद जी, अदील जी, जुनैद जी, मोहम्मद यूसुफ जी, संजीदा जी, शाहिद जी, अबरार बदर जी, थैंक यू सो मच। फारा चांद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। महमूद खान जी थैंक यू सो मच। राजीव जी थैंक यू सो मच। फातिमा यूसुफ जी, फैज़ खान जी थैंक यू सो मच। पाली जी थैंक यू सो मच। सफदर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मंजू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। खिजर हयात खान जी थैंक

थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मोहम्मद वसीफ जी थैंक यू सो मच. जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मलिक साहब थैंक यू सो मच. फिरोज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. लाइबा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है. जुल्फिकार जी थैंक यू सो मच. नबील जी ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ. हाशिम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. निरूपा जी थैंक यू सो मच. अदील जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. दलबीर जी थैंक यू सो मच. गौरी सोलंकी जी थैंक यू सो मच. नवाब जी, अक्रम जी, लतीफुल्ला जी थैंक यू सो मच. जितेंद्र सैनी जी थैंक यू सो मच. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिखिए और अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर बनाइएगा.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: राजेश रेशम या सर का हैप्पी वाला बर्थडे, उनको पता नहीं कि हम इतनी धूमधाम से उनका बर्थडे जो है वो मना रहे हैं। एंड इट्स टाइम
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाली हूँ। प्लीज अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत बार नहीं प्ले कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा दो बार प्ले करूंगी और आपको गेस करना होगा ये गाना कौन सा है। गाना शुरू हो जाता है यार, बस मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आप गेस करिए ये कौन सा गाना आपको लग रहा है। सो लिखना नहीं है, वॉइस नोट भेजो, एकदम वाइब सेट करो सिमरन कौर जैसी एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताओ और गाना गा के बताना है, आपकी मर्जी, बोल के बताना है आपकी मर्जी, बट वॉइस नोट भेजना 3311063 पर। एक बार वापस से प्ले कर रही हूं। विश में गा सकती लेकिन अब आप गाइए 3311063 पे भेज दीजिए।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

28 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। मैं क्या जी सोने हो कि दादी की हाल चाल सच।

0: आप लोग आए हैं कमाल कर दो यार।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत
0: और एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी पर गाना सुनाया था। एकदम मुंह पे आ जाता है यार ये गाना। और
3: Hey Simon, how are you?
0: I'm good.
3: Sibira from Bahrain.
0: Hi Bahrain.
3: Answers, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में।
0: बेला जी मुझे बाहरीन के दिनों से सुन रही है यार, और थैंक यू सो मच।
4: मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। हाय, मेरा नाम आलेश।
0: हाय आलेश, थैंक यू।
5: हेलो सिमरन जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत बढ़िया,
5: वेरी वेरी गुड इवनिंग। और ये जो गाना आपने प्ले किया था ये है मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। थैंक यू रेडियो ऑलिव। जी अविंदा।
6: और इन जनाब का नाम है कामरान हाशमी।
0: बढ़िया किया मोहतरमा, आपने नाम बता दिया। बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे यार, मजा आ जाता है आप लोगों के साथ ये गेम खेल के। जिंदगी वाली गेम में थोड़ी खेल रही हूँ आपके साथ, ये वाली गेम पे कोई असर नहीं होता। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर के अविंदा।
7: जिस सिंगर ने अपने तंदूरी नाइट से सबको नाचने पर किया मजबूर और 13 सुरूर से किया बॉलीवुड को मशहूर, उसी बॉलीवुड की हिट मशीन हिमेश रेशमिया को रेडियो ऑलिव करता है हैप्पी बर्थडे विश। सो आज सारा दिन हिमेश रेशमिया के सॉन्ग्स कीजिए एंजॉय और कहिए लेट्स रॉक।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: नंबर 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

अब सिमरन कौर आप सबको आदेश दे रही है कि अपना वीकेंड एंजॉय करो यार। वैसे तो आप कर ही रहे होंगे, मेरी परमिशन की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं कर रहा था कुछ करने का तो भी करना चाहिए क्योंकि इट्स वीकेंड। मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। अब सिमरन कौर की यहाँ से गल्टी मारने का टाइम आ चुका है, बट ये वादा है डार्लिंग सैटरडे शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात, फिर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो कैसा रहा। बट इससे पहले कि मैं जाऊं, आपको मैं वही चीज़ बताऊंगी कि हाइड्रेट योर सेल्फ यार, पानी वानी पीते रहिएगा एंड अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा। गर्मियां है सो जो बाहर रखा हुआ फूड कुछ देर 1 घंटा 2 घंटे पहले वो वाला खाना कंज्यूम मत करिए, लेकिन अगर आपका खाना बच गया है तो उसको फ्रिज में रखिए, फिर रीहीट करिएगा। ट्राई करिएगा जितना हो सके फ्रेश खाइएगा, खाते पीते रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर.
4: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center, Al-Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. Onair, brought to you by Nasim Healthcare.

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

93 FM.

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।